रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे।

भाई हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए। ये मुमकिन है, इसी का कल

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7178

0: Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
2: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
1: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
2: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
1: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
2: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
1: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464-1800-180-7

1-800-180-7199. श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026. जय बाबा बर्फानी.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं

अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन
2: रेडियो चुनार।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: kazoos.
1: コーナーよ。
2: Radio Chennai. Radio Radio Chennai. Weather update. Weather update.
3: What is frequency? Har dil ki dhadkan show. What's up, show for brother? Aaj ka weather. जी हाँ, आज का मौसम कैसा होगा, क्या होगा मौसम का हाल, बताएंगे आपको पूरा बवाल। मौसम है सनी और इट इज सनी फॉर टुडे, मोस्टली सनी के साथ साथ आज दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है दैट विल बी 31 डिग्री सेल्सियस।
2: अपडेट,
3: और पूरा दिन सूरज चमकेगा, कोई बादल कुछ भी सूरज के आड़े नहीं आना। आज यूवी इंडेक्स अभी के लिए

पीक पर ह्यूमिडिटी 70%, विंड स्पीड है 0 पर, विजिबिलिटी 4 किलोमीटर। आज का सनराइज हुआ 5:59 पर, आज का सनसेट होगा 7:09 पर। हॉट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव सिरे हट धड़काते रहा।

0: जीजूस। कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
2: व्हाट्सएप पे
3: रीजनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल ऑन व्हाट्सएप। वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर जो होता है वायरल हम पहुंचाते हैं आप तक। वायरल ऑन व्हाट्सएप में आइए बात करते हैं एक नए रूल की। बताया जाता है कि सिम कार्ड्स पर लगाएंगे कैप। जी हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से जो है सिलेक्टेड सिम कार्ड नंबर जो है इशू होगा, वो वाला वीआईपी नंबर नहीं बल्कि कितने सिम कौन चलाएगा ये इशू होगा। नॉर्थ ईस्ट के लिए, जेके असम के लिए 6 सिम्स, वही 9 सिम्स पर पर्सन अक्रॉस इंडिया। दैट मीन्स अगर आपके सिम कार्ड्स आप एक निकाल रहे हैं दूसरा रख रहे हैं और आपके नंबर पर 9 सिम एक्टिव है तो उससे ज्यादा आप नहीं खींच पाएंगे। और जेके के लोग, जी हाँ, हमारी यूडी में 6 सिम्स मैक्सिमम। ये बताया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत भी है कि जब ये कैप पूरा होने लगे या नजदीक पहुंचे पूरे होने के तो गवर्नमेंट या जो कंपनीज है सिम अलॉट करने वाली कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज, वो लोगों को इतला दे दिया करे। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चना 90.4 FM, सिरे हक धड़काते रहो।

0: कौन आया?
1: चुनाव अपने हर दिल की धड़कन को सुन रहे हैं आप रेडियो चुनाव 90.4 FM। मैं हूं चौकसी समझदार शो व्हाट्सएप। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप शो का हिस्सा बनने के लिए, अपना किस्सा हम तक पहुंचाने के लिए हम तक अपने व्यूज, इमोशंस एंड थॉट्स, 8899-04-904 इज द नंबर। 8899-04-904 जो नंबर, यद प्रति कॉल है क्यों करें व्हाट्सएप या है क्यों करें टेक्स्ट मैसेज। कॉल व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं आप बताए गए नंबर पर, या डीएम करने के लिए इंस्टाग्राम पर सर्च करें ज़ूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो, सर्च करें JOCKEUS चॉकज्यूस, आईडी पर इनबॉक्स करके भी आप हो सकते हैं शो में शामिल। रेडियो चुनाव 90.4 FM व्हाट्सएप शो, और व्हाट्सएप शो में आज का टॉपिक, जी हाँ, आज हम प्यार की बात करने वाले हैं, आज हम बताने वाले हैं, बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि व्हाट्स लव। अक्सर जब हम प्यार की बात करते हैं या तीन मैजिकल वर्ड्स आई लव यू की बात करते हैं, तो अक्सर हम एक कपल के बीच में ही इसको ढूंढने की, टटोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्यार इस सृष्टि का साधन है, इस सृष्टि का सोर्स है। अगर हम देखें तो प्यार से ही ये दुनिया खूबसूरत बनती है, चाहे वो प्यार आपके और आपके भाई के बीच में, बहन में, घर में, आपके पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ। प्यार ही है जो इंसान को मोटिवेशन देता है कि वो और बेहतर बने। बुरे को अच्छा बनाता है प्यार, जी हाँ, जिंदगी को संवारता है प्यार, और उसी

प्यार की आज हम बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक व्हाट्स लव एंड व्हाट्स लव फॉर यू, आप हमें जरूर बताएं। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार, हर दिल की धड़कन को जोरों से धड़काए। मैं हूं जॉक्स, धड़काते रहो।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा

helpline 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दे।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात

होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: Zeus. Call now.
1: जी हाँ, हम कर रहे हैं आज प्यार की बात आपसे, हो रही है हमारी मुलाकात क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर एक दोस्त जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको भी याद दिलाएंगे कि 8899 0049 0049 0449 नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है। आप सुन रहे हैं हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम पर मजेदार शो व्हाट्सअप। मैं हूं आपका साथी जॉक ज्यूस। दोस्तों फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चैनल के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को, फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्सप्लोर। साथ ही आप डाउनलोड करना ना भूले हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं प्यार की, व्हाट्स लव आज का टॉपिक। शहजाद हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं शहजाद की भाई, प्यार वो है जो हमारे दिलों में बसता है। जाहिर सी बात है, प्यार दिलों में ही नहीं बल्कि हर एक जर्रे में बसता है। बस ये है कि आप कितना प्यार से किसकी ओर देखते हैं। जी हाँ, अगर हम एक डेफिनेशन ढूंढने की कोशिश करें तो डीप अफेक्शन, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट से बनता है प्यार। वही अगर हम देखें तो डिजायर और अट्रैक्शन, अटैचमेंट, ये प्यार के ऐसे तीन स्टेज हैं जो इंसान की जिंदगी में तो आते ही आते हैं। या अगर हम बात की बात करें तो भैया दिमाग का लोचा जो है हो जाता है जब एक इंसान प्यार की बात करे। लेकिन ये प्यार सिर्फ एक कपल तक ही महदूद नहीं, एक लड़का लड़की तक ही महदूद नहीं, बल्कि प्यार आप अपने वालदेन से भी करते हैं, भाई बहनों से भी करते हैं, अपने पार्टनर से तो करते ही है। और जब आपके घर में नन्नी नन्नी किलकारियां गूंजती है तो वो प्यार जो है अलग ही लेवल पर जा बसता है। प्यार अपने दोस्तों से करते हैं, अपने कलीग्स से प्यार से रहते हैं। देखिए हर जर्रे में, हर एक चीज में प्यार है, अपने पैशन से प्यार करना। कोई कोई शख्स जो ड्रीम कार्स है उनको प्यार से देखते हैं, उनसे प्यार करते हैं। सो लव इज एवरीवेयर, ऑल यू नीड टू सी इज दैट वेयर इट एग्जिस्ट फॉर यू। तो प्यार है और प्यार से ही दुनिया जो है खूबसूरत बन जाती है। और ये प्यार जब पहली पहली बार होता है तो क्या होता है, बता रहे हैं सलमान खान। कुमार सानू की खूबसूरत आवाज में पहली पहली प्यार जब प्यार किसी से होता है। जी हाँ, ये लवली सा ट्रैक आपके लिए, इट विल बी फॉलोड बाय अदर ट्रैक्स। तो मेरी जाना कहीं नहीं जाना, नहीं चलेगा कोई बहाना। स्टे हुक्ड टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हर दिल की धड़कन को आपने है धड़काना। मैं हूँ जॉक्स्यूस, रेडियो चैनल 90.4 एफएम पर शो वॉज अब स्टे हुक्ड।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल।

0: मैं हूँ आरजे सूरज।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: धड़कन को धड़का रहे हैं आप और हम। जी हाँ, रेडियो चना 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन शो व्हाट्सअप। और व्हाट्सअप शो में डेरो सेगमेंट्स और अगली सौगात है टेक टॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज। बॉलीवुड की तड़कती फड़कती खबरें और टेक वर्ल्ड से अपडेट्स कुछ ही देर में पहुंचाएंगे आप तक। जरा सा इंतजार, देते रहे प्यार, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे हमदम मेरे यार। मैं हूँ जॉक्स श्रेहट, धड़काते

साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: the radio channel 90.4 FM show. What's up show ka segment Bollywood news. जी हाँ, बॉलीवुड न्यूज़ में आइए चर्चा करते हैं जॉन इब्राहिम की। जॉन इब्राहिम एक आइकॉनिक स्टाइलिश एंड स्ले करने वाले मॉडल जो कि बने एक्टर, एंड ही इज द बीट ऑफ मेनी हार्ट्स। और वही अगर हम देखें तो अच्छा नहीं लगता, बिकॉज नोबडी वांट्स टू सी देयर हीरोज एंड सुपर हीरोज ग्रो ओल्ड। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जॉन इब्राहिम का क्लीन शेव्ड लुक, और क्लीन शेव्ड लुक के बाद जॉन इब्राहिम दिख रहे थे अनरिकॉग्नाइजेबल। और इस लुक में जब उन्होंने फोटो बाहर दिखाई तो लोग बोलने लगे ये क्या हो गया, जॉन इब्राहिम ऐसे तो नहीं थे, बुड्ढे कब से दिखने लगे। एंड इट वॉज इस क्लीन शेव्ड लुक जिसे लोगों ने खासा कटाक्ष कर दिया। रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मैं हूं जॉग्स, बने रहें, सुनते रहें, धड़काते रहें।
1: मेरा बाबा

0: दोस्तों रेडियो चुनाव 90.4 एफएम बॉलीवुड न्यूज आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ, मैं हूं जॉक्सिस, यू आर ट्यून्ड इन टू द फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट रेडियो चुनाव 90.4 एफएम
1: बॉलीवुड न्यूज।
0: जी हां, ये चर्चा करते हैं गोविंदा की। चीची जो कि बहुत टाइम से दुविधा से गुजर रहे हैं, ही इज डूइंग स्टेज शोज, ही इज डांसिंग इन मैरिज, बट अगर हम देखें तो रिसेंटली उन्हें स्पॉट किया गया है किसी जगह जहां पर उनके हाथ में दिखा एक बजट स्मार्टफोन। बताया जा रहा है कि पेपराजी ने जब क्लिक किया तो फोन पर अटेंशन गया, जिसकी वजह से इंटरेक्शन जो है आगे बढ़ी। जी हाँ, व्हाट इज मोबाइल नंबर है पर डांस करने वाले गोविंदा के हाथ में दिखा 10,000 से 20,000 का स्मार्टफोन, और लोगों ने कहा कि कैसा है इसका फाइनेंशियल स्टेट, कहीं ये डगमगा तो नहीं गया। वैसे बता दें आपको कि गोविंदा बड़े टाइम से जूझ रहे हैं, बता रहे हैं कि जो उनका एरा था वो खत्म हो चुका है और वही गोविंदा अब कहीं भी कभी भी हाथ पैर मारते नजर आ रहे हैं। जस्ट ट्राइंग टू मेक हिज डेज हैपन। ओह गॉड ब्लेस एवरीबॉडी, क्योंकि इंसान अच्छा भी देखता है बुरा भी। ये है कि अच्छे में बुरा याद रखे और बुराए में ये उम्मीद करे कि अच्छा करा हुआ वापस आएगा। हॉट इस फ्रीक्वेंसी पर अगला सेगमेंट टेक टॉक, सब बने रहें, सुनते रहें और दिल की धड़कन को धड़काते रहें। मैं हूं जॉक्सिस, मेरी जान से रिहक्ट, धड़काते रहो।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: Dr. Zeus. Kom nou ja.
1: Dead dogs, dead dots. Dead dogs, dead dots. Dead dogs, dead dots.
2: Dead dogs with RJ Zeus.
1: Dead dogs, dead dots. Dead dogs, dead dots. Dead dogs, dead dots.
0: Radio Channel 90.4 FM Show. What's up, show का segment Tech Talks. Tech Talks में आइए बात करते हैं चाइना की. जी हाँ, चाइना. It's a wise saying that God made the world, rest is made by China. So, China आ रहा है नई उफान के साथ. China ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का चीपेस्ट ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसका प्राइस है $1,370. बताया जाता है चाइना इसका इस्तेमाल जो है घरों और स्कूलों में मद्देनजर रखते हुए लोगों को बेच रहा है. और वही अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने एक रोबोट टेस्ट किया, जहां पर रोबोट का इनिशिएटिव था कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड से वो भागे. रोबोट भागा, लोगों ने देखा, लेकिन उसे रोक नहीं पाए. फाइनली दीवार से टकरा कर शॉट हो गया. अब स्कूल और कॉलेज में अगर यही सब होता रहा तो जस्ट इमेजिन कि क्या ही हो सकता है और कितनी दिक्कत हो सकती है. बट ये है कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और धीरे धीरे हम जो है इस क्षेत्र में, मतलब सर्विस रोबोट्स इंडस्ट्री में, अपना कदम जमा रहे हैं. इंसान रोबोट्स पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं. फिलहाल गाने के साथ नाचिए और सुनते रहिए रेडियो चैनल पर मुस्तार शो. व्हाट्सअप, मैं हूँ जॉग्स. धकाते रहो.

जा बुरा करते हाँ पलक धड़के हाय कितनी धड़के उमर की उठा कड़कती कमान कातिल अदा।

सो माय अफलातून इट्स माय टाइम टू साइन ऑफ फॉर टुडे. जी हाँ, इजाजत लेने का वक्त हो चला है. और जदीबा इज हियर लुकिंग एट द क्लॉक. शी माइट बी शॉक्ड कि बाह बजे या लई. सो इट इज लाइक कि शी विल बी हियर सून. जी हाँ, चिनार बीट्स बीट्स ऑन रिपीट. आज के लिए इतना ही. कल मुलाकात होगी. और मुलाकात की ये बात जो है इस तरह से भी जारी रखी जा सकती है कि इंस्टाग्राम पर जॉक्स सर्च करें और वहां पर डीएम में भी हम इस वार्तालाप को जारी रख सकते हैं. याद रखिए, JOCKXEUS. Until we meet again, my love, keep your head high, walk tall and always remember that I love you all. Bye bye, tata, take care, masalama.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बज लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौको ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

देखिए अभी ये तो सुपर है और बैन तो बस आपकी ही दुनिया हो रखी है। 91.4 रेडियो चुनार ब्रागा सो चुका है शो चुनार बीट्स का फुल ऑन वाइब एंड ड्राइव बीट्स और अपे

It's on repeat. You're tuning on Reetab. Enjoy it. You're only on radio. You're tuning on 90.4 FM. Day. सारी बातें हो रही हैं. मस्ती मजाक. Fun भी है. Entertainment है. हर चीज है. Boy. यानी कि आप है. मैं हूँ. मौका है. दस्तूर है. कहाँ जाने का हुजूर. अब मंडे के दिन फन डे बन जाता है. बहुत सारे लोग कहते हैं ये मुझे नहीं जाना है, मुझे रोक दो, बट ऐसा नहीं होता है. देखिए, हमें जाना पड़ता है. थोड़ी ये शिनचैन वाला एरा नहीं है. हमें जाना है स्कूल तो जाना पड़ेगा, ऑफिस तो जाना पड़ेगा, और जो वादा किया है सैटरडे को फिलहाल मुझे उसको निभाना पड़ेगा. तो आ गई हूँ मैं आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए, और जाने कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आपकी लाइफ में, और स्पेशली क्या है आपकी मैसेज जो

वो पहुंचाना चाहते हैं वहां वहां तक जहां जहां तक पहुंचती है रेडियो चुनार की आवाज। सो आई एम हियर माय फ्रेंड फाइट टू गो हियर एंड देयर, तो जल्दी से जो कैसा बन जाइए और हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी का हिस्सा बन जाइए। हाय हाय, मैंने तो लौड़ है इस चीज़ की कि भाई क्या ही है, क्या ही रवि किशन ने जो इस सॉन्ग को अपने नाम किया है ना, वो अलग ही चीज़ बन चुका है। वाइब है बॉस और ट्राई भी है मेरी साथ। जब तो खिल जान चल लागी लबदा, फिर फिलहाल तो मैं लबदियाँ हैं अपनी वाइब और ट्राइब और प्यार आपका बहुत सारा ओनली और रेडियो चुनाव 90.4 FM। यह है हर दिल की धड़कन, यह है रेडियो चुनार जिसमें बड़ा है आपका प्यार और यही बनता है प्यार से। सही है मेरे यार।

Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

और लाइट मोटर व्हीकल्स, हैवी मोटर व्हीकल्स, फेयर वेदर है, सो आप बेझिझक होकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बची, डिसिप्लिन के साथ रॉन्ग साइड ड्राइविंग नहीं करनी है, ओवरटेक मत कीजिए, क्योंकि क्या पता फिर आप ही ओवरटेक हो जाए और आप ओवर करने के चक्कर में ओवर ही बन जाए. सो वो चीज़ नहीं करने का, ऑलवेज अपने दिमाग को शांत रखने का. और क्या रखा है इस चीज़ में, क्या चीज़ गड़बड़ी करें, हड़बड़ी नहीं करनी है, गड़बड़ी क्यों करनी है. सो इट्स ऑल कि हम कैसे चाहे हमारा सफ़र कितना अच्छा हो, हम चाहे तो अपनी सोच बूझ से विचार करके हम ये सोचें कि अगर हम सही करेंगे तो कितने सारे फ़ैन आपके बन सकते हैं, हो भी सकता है, यू नो. सो डेफिनेटली अगर हम सही करेंगे सही होगा, गलत करेंगे तो वही होता है कि गर्ल बनने के चक्कर में मेरे दोस्त हम फूल बन जाते हैं. तो आपने मलंग बनना है, आप बन जाइए, बट ये नहीं कि आप उस दौरान रूल्स को ब्रेक करेंगे. रूल्स को फॉलो करना है, सच में हीरो बनना है, जीरो नहीं, एंजॉय करना है. फिलहाल के लिए ट्रैक फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी, ओनली ऑन रेडियो 91.4 FM. मैं हूँ दीवा, सुन रहे हॉरिस फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर, रेडियो 91.4 FM, हर दिल की धड़कन मेरे दोस्त. हक से धड़का

0: खबर ऑनलाइन
1: आज की खबर स्वागत है आज की
0: जी आज की ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मन बुझू खबर विस्तार से अंत की अच्छी अच्छी खबर किस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। खबर

आज की खबर है इश्कनामा मूवी के बारे में। जय रंधावा, शहनाज गिल, ऐसी मूवी जिस पे हर कोई बात कर रहा है। अब रियल लाइफ स्टोरी के बारे में जहाँ पर बात आती है, आफ्टर मैं वापस आऊँगा, ऐसा लग रहा है कि एक और हिट मूवी, एक और इमोशनल पार्ट, बिकॉज़ ये मूवी बेस्ड है रियल लाइफ स्टोरी की, जहाँ पर एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपने प्यार को बरकरार रखा, यानी कि एक जो सिख स्टूडेंट है उनका जो प्यार है नसीमा बन जाती है, जो उनकी ज़िंदगी का एक प्यार होता है, लेकिन आफ्टर पार्टीशन वो कहीं ना कहीं वो उनसे दूर भी हो जाती है और उनका प्यार अधूरा रहता है, लेकिन वो उन प्यार को बरकरार रखते हैं, शादी नहीं करते और हमेशा उन्हें मिस करते हैं। एंड इट्स ट्रू स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी है ये। इट्स टोटली अमेजिंग, क्योंकि इस मूवी में जितनी हम बात करें उतना कम है, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्यार को पूछते हैं, और चाहे फिर वो आप उनके साथ हो ना हो, पर वो हमेशा अपने प्यार को बसाए रखते दिल में और ठान लेते हैं कि ये है तो ज़िंदगी में और कोई नहीं चाहिए। एंड स्पेशली वेन वी टॉक अबाउट जय रंधावा एंड शहनाज गिल का जो केमिस्ट्री है मूवी में, दैट्स अमेजिंग। एंड दे आर शोइंग कि कैसे प्यार के लिए लोग लड़ जाते हैं, और इश्कनामा मूवी बेस्ड है रियल लाइफ स्टोरी पे, और अभी भी नसीमा को ढूंढा जा रहा है। तो कहाँ है नसीमा, और उनको क्या पता है कि उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया जाता है। तो जल्दी बताइए मुझे कि आपको मूवी कैसी लगी, अगर आपने देखी, या आपको क्या लगता है कितनी एक्साइटिंग है मूवी। 8899049044 कॉल देख सो व्हाट्सएप कीजिए, और शो चनार बीट्स का हिस्सा बन जाइए।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

शो चुनाव बीच और बात हो रही है आज हमारे चाइल्डहुड शोज के बारे में, चाहे फिर हम बात करें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, या फिर हम बात करें बीवी से करे प्यार, या हम बात करें शक्तिमान, या फिर हम बात करें अभी भी बहुत सारे शोज है जो हम देखते हैं, या फिर चाइल्डहुड शोज में अगर हम स्पेशली बात करें टॉम एंड जेरी मेरा फेवरेट कार्टून, और शिनचैन हो, या बहुत सारे ऐसे शोज है जो हमारे फेवरेट हुआ करते थे। आपका फेवरेट चाइल्डहुड शो कौन सा था, आप जब छोटे थे या फिर किड्स का जब आप देखते हैं उनको, और आज अगर वो आपके ज़माने के कार्टून्स देखते शोज देखते तो आपको कितना अच्छा लगता है और कैसे मेमोरीज रिकॉल होती है, मुझे बताइए शो कैसा बन जाए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट किड्स के जो शोज होते हैं चाइल्डहुड शोज। शो कैसा बन जाए 8999-0494 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए। आप सुन रहे हैं हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

ये आराम तो मिलता है जब बातें बढ़ती है, जज्बात बढ़ती है और शो में बात होती है चालू शोज के बारे में। अब ऐसे कौन से शोज है जो आपने देखे हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा वो मेमोरेबल लगते हैं और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हुआ करते, अभी भी जब आप देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। उनके बारे में बात हो रही थी आज, हमारे फेवरेट शोज़ के बारे में, कार्टून शोज़ या फिर टेलीविज़न शोज़ जो हम देखा करते थे तो कितना अच्छा लगता था और कैसे हमारी चाइल्डहुड मेमोरी जो है वो रिवाइव होती है, हम रिकॉल कर पाते हैं अपने बेस्ट मेमोरीज़ को। और इसी के साथ शो चुना और बीस भी खत्म हो जाता है और कल नए टॉपिक पे बात होगी। बट फिलहाल के लिए आप अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं, शो म्यूजिक ऑन डिमांड पर जल्दी स्टार्ट हो रहा है, बस कुछ ही मिनट बचे हैं। 8899904904 ये नंबर है, आप कॉल टेक्स्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। 8899904904 पर आप शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, शो का हिस्सा बन जाए क्योंकि आप सुन रहे हैं हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: की लगती है, वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा।

0: हस्बैंड होकर, तेरी तो है। गेम ओवर।
1: दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

लो जी, पुकारा आपने, मैं चली आई, बट जाने के लिए आई हूँ क्योंकि टाइम आ चुका है कि आपसे अलविदा लिया जाए और मैं जाऊँगी तभी असर आएगी शो हंगामा। लेकर फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखे आप और सुनते रहे रेडियो चुनाव 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

आई मैं हूँ एस्टा और शो शुरू हो चुका है हंगामा, जहाँ होता है ड्रामा, इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, क्या बजेंगे और लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच जो सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है

देखिए शो शुरू हो चुका है, बहुत सी बातें होती हैं, क्या चल रहा है, चाहे हम ट्रेंडिंग रील्स और मीम्स की बात करें, रेलवे अपडेट की बात करें, वन मिनट फैक्ट टॉपिक की बात करें, गेम ऑन, बहुत कुछ होता है बराबर चार तक रेडियो सुनार पे, चार तक, दो से चार रेडियो सुनार पे हंगामा होता है और बहुत सी बातें होती हैं और आते आते ही प्ले होता है कुछ खास कुछ क्रेजी। जीने के लिए और आपको इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का डोज देने के लिए मैं तो आ चुकी हूँ और बराबर चार तक आ रहूंगी। मैं हूँ आसरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। मैं बस यूं कही और यूं वापस आए।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
0: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। जी हाँ, हंगामा तो है, बट आज का क्या ताज़ा ताज़ा जो हमारे सोशल मीडिया से हम तक खबर पहुंचती है कि क्या चल रहा है, चाहे यूट्यूब है, एक्स है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, रीपोस्ट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं किसी चीज़ के बारे में बात होती है। सोशल मीडिया है ही ऐसी जगह जहाँ पे कुछ भी कभी भी ट्रेंड कर सकता है, लोग कुछ भी देखना पसंद करते हैं। बट कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें कुछ एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग देती, क्योंकि यूजुअली नई चीजें जो नया मार्केट में होता है वो ट्रेंड करता है, वो लोग देखना पसंद करते हैं। बट कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो पुरानी होती हैं, बट कहीं ना कहीं अब लोगों को उसका वर्थ और वो वाइब समझ आती है। और आज की जो चीज़ है, आज का जो फैक्टर ट्रेंड कर रहा है वो भी ऐसा ही है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दैट वाज डायरेक्टेड बाय जोया अख्तर, जिसमें बहुत सारे दिग्गज लोग, बहुत सारे टैलेंटेड ऋतिक रोशन, अभय देओल, फरहान अख्तर, ऐसे एक्टर्स थे। कटरीना कैफ का स्पेशल अपेयरेंस था, बहुत अच्छी मूवी थी और अभी भी इस मूवी को याद किया जाता है इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप खुद को जानना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू नो द पर्पज ऑफ योर लाइफ, आप करना क्या चाहते हैं, और अभी भी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पे बहुत सारे ट्रिप्स लोगों ने लाइक क्यूरेट किए हैं और अभी भी इस बारे में सोचा जाता है। बट अभी देयर इज एन आर्टिकल जो रेडिट पे काफी ट्रेंड कर रहा है, जहां पे एक आदमी कह रहे हैं जिनका नाम सचिन है, सचिन कह रहे हैं कि 11 साल लगे मुझे ये सोचने के लिए कि ये जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी है, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं रिजेंबल करती है हॉलीवुड की मूवी द हैंगओवर से। और सबसे अमेजिंग चीज़ जो इस रिलेटेड इस आर्टिकल में लिखा हुआ है वो ये है कि जो एक्चुअली मेन कैरेक्टर है द हैंगओवर मूवी, 2009 में वो हॉलीवुड एक मूवी है वो रिलीज हुई थी, और उसमें एक कैरेक्टर का नाम ब्रैडली कूपर है, ही एग्जैक्टली लुक्स लाइक ऋतिक रोशन, एंड दैट्स सो अमेजिंग बिकॉज दोनों ही मेन कैरेक्टर थे, दोनों का ही प्लॉट वैसा था कि भाई आई डोंट केयर अबाउट द लाइफ, बट मैं जीना चाहता हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे जीऊँ बिकॉज ऑफ माई बिजी लाइफ शेड्यूल, एग्जैक्टली वही प्लॉट है। बट कहीं ना कहीं जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एक देसी टच है, स्लाइस ऑफ लाइफ ऑफ इंडियन गाइस।
2: मुझे सुन के अच्छा लगा है सेनोरिटा।
0: एग्जैक्टली, सुन के अच्छा लगा, मजा आया, और आप भी अपने विचार हम तक भेजिए। 8899904904 इज नंबर, आप भी बताइए कि आपका फेवरेट कैरेक्टर इन मूवीज में से कौन सा है। मैं हूं असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। मैं बस यूं कही और यू वापस आई पक्का।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
0: Welcome back to Show Hangama and you have tuned into the hottest frequency of North Kashmir 90.4 FM. जी हाँ, शो हंगामा है, पर अभी अपडेट्स का टाइम है, यानी कि रेलवे अपडेट ऑन द गो। और आज की अपडेट ये है कि जो अभी डायरेक्ट सर्विसेज ऑलरेडी दे वर ऑन, बट कहीं ना कहीं जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मेंटेनेंस है, टेक्निकल मेंटेनेंस है, वो अभी तक जारी है। और अगर हम स्पेशली वंदे भारत ऑपरेशंस की बात करें, जो अभी डायरेक्ट सर्विसेज बिल्कुल विदाउट एनी ट्रायल एंड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो चुकी है फ्रॉम जम्मू तवी टू श्रीनगर एंड वाईसी वर्सा। और स्पेशली अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा रहा है, जो टेक्निकल ग्लिचेस पे काम किया जा रहा है, वो अभी विंटर रेजिलिएंट इंजीनियरिंग पे काम किया जा रहा है, हीटिंग सिस्टम्स पे काम किया जा रहा है, क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं। और मैक्सिमम जो ट्रैवल श्रीनगर टू जम्मू तवी होता है या श्रीनगर टू अदर स्टेट्स होता है, वो विंटर्स में ही होता है बिकॉज ऑफ द हार्श वेदर कंडीशंस इन कश्मीर। सो ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखा जा रहा है एंड दिस इज़ अ रियली गुड थिंग फॉर एवरीबडी हु इज़ लिविंग here and outside Jammu and Kashmir. इसके अलावा लोकल सर्विसेज की बात करें तो कोई भी ट्रेन डिलेड या कैंसल्ड नहीं है, एवरीथिंग इज एज पर शेड्यूल ऑफ समर टाइम टेबल एंड यू कैन अवेल द समर टाइम टेबल रेल वन ऑफिशियल ऐप से, जो कि ऑफिशियल इंडियन रेलवे ऐप से। देखिए, रेल वन से आप सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर रेलवे लिंक के बारे में नहीं, बल्कि पूरे पूरे इंडियन रेलवेज के बारे में जान सकते हैं। कौन सा स्टेशन कहाँ है, कौन सी ट्रेन कहाँ है, लाइव लोकेशन ऑफ द ट्रेन, एंड इवन इफ आप अगर ट्रेन में बोर्डेड हैं, उसके बाद भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है और कहाँ पे आपको लाइक डिपार्ट होना है या कहाँ अराइव होना है। बस इस बात का ख्याल रखिए कि सवारी जो है अपने सामान की और खुद की खुद जिम्मेदार है। अपने रेस्पेक्टिव स्टेशन पर 10-15 मिनट पहले पहुंचे ताकि आपके शेड्यूल में कोई डिले ना हो और आप वो ऑलमोस्ट कॉट द ट्रेन वाला मूवमेंट फेस ना करें। मैं हूं अस्त्रा सुन रही है रेडियो सुनार 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: मैं हूं असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 एफएम पे शो हंगामा। एंड अभी वक्त है 1 मिनट फैक्ट का, और 1 मिनट फैक्ट आज का कुछ क्रेजी सा है, क्योंकि देखिए आज हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, केमिकल फिजिकल रिएक्शंस होते हैं, और स्पेशली जब हम कुछ कोई भी इमोशन महसूस करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम लाइक बोला जाता है ना कि जब गुस्सा आए तो शांत हो जाइए कुछ टाइम के लिए, आपको बैठ जाना चाहिए, ठंडा पानी पी लो, बाहर चले जाओ या कुछ ऐसा कर लो। वो इसलिए क्योंकि एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो भी हमारी बॉडी में इमोशंस रहते हैं, चाहे वो खुशी हो, दुख हो, पेन हो, गुस्सा हो, कोई भी इमोशन हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली फिजिकली और केमिकली 6 सेकंड के लिए रहते हैं बॉडी में। बाकी फिर जो हमारे दिलो दिमाग पे हम सोच रहे होते हैं, भाई इन्होंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, वो माइंड का गेम है, क्योंकि वो आपके इमोशंस को फ्यूल करता रहता है और बार बार महसूस कराता है, क्योंकि वही पैटर्न है, वही गेम है दिमाग का। बट जो एक्चुअल इमोशन है वो सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड का होता है। एग्जैक्टली दीदी सच कह रही हैं, चिल करने में ही एक्चुअली मज़ा है और समझदारी है। क्यों? क्योंकि जब तक आप चीज़ों को उतना पर्सनली नहीं लेते हैं और ये इस बात को दिमाग में रखते हैं कि 6 सेकंड मिनट भी नहीं, 6 सेकंड वो इमोशन आपकी बॉडी में असर करेगा, उसके बाद इसका कोई असर नहीं है इफ़ यू विल लेट इट गो। सो डोंट डू चिल ना, टुडेज मंडेज एनर्जी इज दिस ओनली कि हमें चिल करना चाहिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, लोगों को दुख देने में कुछ नहीं है, और खुद को भी दुख मत

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। जी हाँ, हंगामा है, बट हंगामा पे ड्रामा के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी होती है। और अभी की बात करें तो हर दिन का एक स्पेसिफिक टॉपिक रहता है, और आज का भी एक स्पेसिफिक टॉपिक है। और स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में बदल रही हैं, उनके बारे में बात करना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारों का लोगों का मानना ये है कि सिर्फ जो सोशल इशूज़ हैं या सोसाइटी में जो चीज़ें हैं या जो नरेटिव शेप होते हैं वो किसी सोशल कॉज की वजह से शेप होते हैं या अवेयर बिल्कुल होते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं, बहुत सारे रैलीज होती हैं, या सोशली कुछ ऐसे एक्टिविस्ट होते हैं जो इनके बारे में बात करते हैं, उससे नैरेटिव चेंज होते हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जो हमारी डेली लाइफ का पार्ट है, हमारी चॉइसेस क्या है, हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारे नैरेटिव चेंज करता है। और आज एक ऐसी ही चीज़ है, देखिए हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोटी कपड़ा मकान है, तो आज कपड़े के बारे में बात कर रहे हैं हम, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी मिसकंसेप्शंस है रिलेटेड टू थ्रिफ्टिंग। जी हाँ, थ्रिफ्टिंग क्या है, किस चीज़ को हम थ्रिफ्टिंग कहते हैं, किस चीज़ को हम विंटेज शॉपिंग कहते हैं, किस चीज़ को हम लाइक वो कहते हैं जो प्री यूज्ड चीज़ें होते हैं उनको क्या कहते हैं, और एक्चुअली

0: एक्चुअली जो चीज़ें हम खरीद रहे हैं जो प्रीयूज्ड है या जो कंपनी से डिस्कार्डेड होते हैं या जो भी क्लोथ्स हैं उनको एक सेकंड चांस मिलता है इस चीज़ से. और थ्रिफ्टिंग का क्या स्टाइल है, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, और एक्चुअली इससे रिलेटेड बहुत सारे टाबूज और स्टीरियोटाइप्स भी हैं, उनके बारे में बात होगी. और स्पेशली जब भी कोई थ्रिफ्टिंग का नाम लेता है कि हम सेकंड हैंड कपड़े खरीदते हैं, उससे एक और कॉन्सेप्ट रिलेटेड होता है कि भाई ज़रा गरीब तमी चाहिए थ्रिफ्ट करान. बट अगर अभी की बात करें, अभी के माहौल की बात करें, क्लाइमेट चेंज के लिए इकोलॉजिकल जो भी स्टिग्माज हैं उन्हें दूर करने के लिए, उसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, अभी थ्रिफ्टिंग इज द बेस्ट ऑप्शन. सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या एक्चुअली नया मॉडर्न जमाना या जो नए लोग हैं, जो जेंजीज हैं, अल्फाज हैं, जेन अल्फाज हैं, उनकी बात करें, किसी की भी बात करें, वो थ्रिफ्टिंग के बारे में क्या सोचते हैं और इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं. मैं मौसरा सुन रही रेडियो सुना 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.
1: क्या पका रे ला, ओनली बजा रे ला, थोड़ा सिंगिंग विंगिंग भी होवे बाबा.
2: तंगी घुमा के उल्टा टोपी टिका के, गॉगल लगा के अपना कॉलर चढ़ा के,

0: हेलो
1: मारे रेटा उन नखोज जाए तू हम लोगों को जीने देगा कि नहीं।
0: ये कौन सा डिफेक्टिव पीस आ गया?
2: ये पेस्टिंग कौन है?

0: हाय, मैं हूँ स्टार। आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।
1: ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं।
0: देखिए, हर किसी

लाइफ में एक जो सिनेमा है या गाने हैं, म्यूज़िक है, एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं. और जब भी हम कोई ऐसा ट्रैक सुनते हैं, गाना सुनते हैं जो दैट टेक्स यू बैक टू समहाउ फॉर द लाइफ दैट यू हैव लिव्ड. और हर किसी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ट्रैक होता है. कुछ बड़े बुज़ुर्ग लोगों की बात करें तो उन्हें गज़लें सुन के कुछ दौर याद आते हैं. घर वालों की बात करें, जैसे पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंटल जेनरेशन है, उनकी बात करें तो उन्हें कुछ गाने सुन के याद आते हैं. और हमारा मतलब जेंजीज की बात करें तो कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक है नहीं, किसी से भी कोई भी फीलिंग जुड़ जाती है. बट स्पेसिफिकली अगर कुछ ऐसे ट्रैक्स होते हैं ना जो सुन के आपको एक बहुत ही वो फेंट मेमोरी, फेंट आइडिया आता है कि वो जिस समय मैंने पहली बार ये गाना सुना था तब मेरी ज़िंदगी कैसी थी, वो एक नॉस्टैल्जिया सा आता है. और अगर मैं अपनी बात करूँ, एक छोटी सी कहानी है कि ये जो ट्रैक है दिल तो बच्चा है जी, इश्किया मूवी से है ये. बट मैं जानती नहीं थी किस मूवी से है या क्या है क्या नहीं है. बिल्कुल एक हफ्ते रिपीट पे मैंने ये गाना सुना है, वो भी 2019 की कहानी है ये. 2019 में जब मैं सुन रही थी तो मेरी ज़िंदगी बहुत डिफरेंट थी. तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि जब भी आप कोई ऐसा गाना सुनते हैं जो आप बचपन में, पास्ट में, जवानी में या कुछ साल पहले आप सुनते हो या पहली बार सुना हो, तो आपको जो फीलिंग आती है ना, वो हर बार वो गाना सुनने पर रिवाइव सी हो जाती है.

0: बिल्कुल, गौर तो ये दिल करता है और दिमाग भी कहीं ना कहीं आपको उस जिंदगी में ले जाता है, उस पास्ट एरा में ले जाता है और बहुत सी चीज़ें याद आती हैं। मैं हूँ अस्रा सुंदरी, रेडियो सुनार, और आप भी बताइए कि आपके पास ऐसा कोई ट्रैक है जो आपने सहेज के अपने संदूक में संभाल के रखा है, जिसके बारे में आप किसी से बात नहीं करते, बट जब भी सुनते हैं वो गाना आपको वहीं वापस ले जाता है। मैं हूँ अस्रा सुंदरी, रेडियो सुनार, आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं। 8899 04904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। मैं हूँ अस्रा सुंदरी, रेडियो सुनार।
1: हर्ट

0: जे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
0: हाय, मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। हर दिल की धड़कन। और अभी जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज थ्रिफ्टिंग। और थ्रिफ्टिंग में बहुत सारे प्रोज भी हैं, बहुत सारे कॉन्स भी हैं। और अगर प्रोज की बात करें तो प्रोज का जो फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये जो बात कर रहे हैं हम सस्टेनेबल फैशन के बारे में, सस्टेनेबल फैशन वो होता है कि आप विदाउट गिविंग एक्स्ट्रा एंड विदाउट जो भी चीज़ें एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप कंज्यूम करें चीज़ें, चाहे वो अगर स्पेशली अभी हम सस्टेनेबल फैशन की बात कर रहे हैं तो जो भी चीज़ें आप पहन रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखें कि वो माइक्रो प्लास्टिक्स नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ें जो एक्चुअली फोकस करता है, जो हम खरीद रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं क्लोदिंग, वो एक्चुअली गारमेंट वर्कर्स जो हैं उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुत जब फास्ट फैशन की बात करें, जैसे शीन है या एक्सप्रेस पांडा है, बहुत सारी ऐसे ऐप्स हैं, साइट्स हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे क्लोथ्स जो है वो काफ़ी प्रोड्यूस करते हैं, उनका डिस्पोजेबल भी बहुत जल्दी हो जाता है। अब देखिए, जो चीज़ें डिस्पोज जल्दी हो रही हैं वो अक्यूमुलेट भी उतनी ही रेट से होगी और उस वजह से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। और अगर हम थ्रिफ्टिंग को एक चांस देते हैं, यानी कि जो पुरानी चीज़ें हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं लगाने के लायक हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो सेकेंड हैंड क्लोथ्स नहीं होते, बल्कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो कंपनीज ने डिस्कार्ड किए होते हैं छोटे छोटे रीजंस की वजह से, या कोई भी ऐसा मॉडल होता है, कोई भी ऐसा फैशन आर्टिकल होता है जो पूरा स्लॉट ही कैंसिल हो जाता है और फिर उसे थ्रिफ्ट या सेकेंड हैंड शॉपिंग पे बेच दिया जाता है, कम प्राइजेस में बेच दिया जाता है, और उससे भी कम प्राइजेस में वो मार्केट में खरीदे जा सकते हैं जो कि फ्रेश कंडीशन में होते हैं। बट ये है कि उनका जो वो रिजेक्टेड कंपनी पार्ट होते हैं या कुछ ऐसा होता है कि उसे रिजेक्ट किया जाता है और वो चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। और अगर हम विंटेज चीज़ों की बात करें तो विंटेज डेफिनेटली इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम थ्रिफ्टिंग। विंटेज इज़ बाइंग सेकेंड हैंड थिंग्स, बट वो एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, वो विंटेज ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्चुअली 1 in a million चीज़ हो, 1 in a 100 चीज़ हो, 1 in a 10 चीज़ हो। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें यूजुअली हमारे पास वो, क्योंकि पास्ट में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी वो अभी नहीं हो रही, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लिमिटेड बची हुई हैं उन्हें हम विंटेज कहते हैं, और उनकी भी अपनी एक पहचान है, अपनी एक ज़रूरत है, और वैसे ही थ्रिफ्टिंग की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। चकाचक वाला कॉन्सेप्ट है ये आज का, कि थ्रिफ्टिंग को क्यों हम सपोर्ट करें। इसलिए क्योंकि जो भी चीज़ें, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है व्हेन यू आर थ्रिफ्टिंग समथिंग, उसके बारे में भी बात होगी। बट अभी की बात करें तो थ्रिफ्टिंग इस

न्यू फैशन, यू हैव टू. अगर कुछ लोग आपको ये कहते हैं, अगर आप किसी कोई आपको ये कहता है कि क्या फ्रेश ले आओ, इसमें क्या, हाँ फ्रेश लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप थ्रिफ्ट कर रहे हैं, दैट इज अ कूल थिंग टू डू. व्हाई? बिकॉज यू आर सेविंग एनवायरमेंट एंड बीइंग फैशनेबल एंड सेविंग योर मनी. एंड व्हाट डू यू, व्हाट एल्स डू यू वांट?

कोलैबोर में एकदम चकाचक है और हम एक दूसरे के साथ बात भी कर सकते हैं, यू नो, एकदम अपने थॉट्स एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं. 8899904904 इज द नंबर, जल्दी से जुड़ जाइए, बन जाइए शो का हिस्सा. मैं मोस्ट ऑफ संतरा गेट रेडियो सुना 90.4 FM. मैं बस यूं कह रही हूँ वापस आए.

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

magic touch. कैसे यार?

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: Hi, मैं हूँ अस्रा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट थ्रिफ्टिंग स्टाइल्स एंड फैक्ट्स एंड सिग्निफिकेंस कि कैसे थ्रिफ्टिंग के रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं और क्यों हमें थ्रिफ्टिंग करना चाहिए एंड व्हाई इज इट द न्यू फैशन एंड द बेटर वन और उसके बारे में हमने बात की। बट अभी की बात करें तो टैबूज एंड स्टीरियोटाइप्स क्या हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो एक्चुअली नॉन थ्रिफ्ट कस्टमर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि सेकेंड हैंड क्लोथ्स अगर हम खरीदेंगे तो वो गंदे होते हैं, डर्टी या अनहाइजीनिक चीज़ है। बट एक प्रोफेशनल शिफ्ट ये हुआ है कि जो भी शॉप्स अभी बेचते हैं थ्रिफ्ट, दे वॉश देम, दे स्टेन, सैनिटाइज किया जाता है और उसके बाद डिस्प्ले के लिए जो आर्टिकल्स है वो रखे जाते हैं। और इसके अलावा जो वो पॉवर्टी वाला स्टिग्मा है, यानी कि है गरीब है, शायद गरीब, हमने गरीबी देखी है, बट द पॉइंट इज के दिस इज द न्यू फैशन। अगर कोई इंसान आपको ये कहता है कि गरीब हो आप, शायद इसीलिए आप सेकेंड हैंड क्लोथ्स खरीद रहे हैं, प्री यूज्ड या जो डिस्कार्डेड क्लोथ्स हैं, बट दैट इज द न्यू सेंसिबल थिंग अ पर्सन कैन डू। वाई? बिकॉज आप एनवायरमेंट को बचाते हैं और आपके पास एक शिफ्ट रहता है, यू आर विद द मॉडर्न वर्ल्ड। इसके अलावा बट एक और चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं करते। जब हम थ्रिफ्टिंग के बारे में बात करते हैं तो इसके रोजाना दिमाग इसमें कि हम बहुत सस्ते में चीज़ें ला रहे हैं, आर्टिकल जो क्लोदिंग आर्टिकल्स हैं वो ला रहे हैं, तो हम बहुत सारे आर्टिकल्स ले आते हैं, ओवर कंजप्शन हो जाता है। बस उस एक चीज़ का अगर ख्याल रखे इंसान तो थ्रिफ्टिंग इज द बेस्ट थिंग पॉसिबल राइट नाउ इन द वर्ल्ड ऑफ फैशन। मैं हूँ अस्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM और अभी जाऊंगी बट कुछ ही ट्रैक्स ही बात

मास्टर और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन। और अभी शो चल रहा है हंगामा और सेगमेंट शुरू हो चुका है गेम ऑन। गेम ऑन जहाँ मिलता है आपको लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अपडेट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट स्पोर्ट्स, जो कहीं और बात नहीं होती है पर यहाँ होती है, क्योंकि आज इसरा माइक पे बोलेगी तो हंगामा और ड्रामा और इन्फॉर्मेशन तो होगा ही। एंजॉय कीजिए द ओल्ड

OG Jogi track, जो actually Durandar movie में भी remix as a remix use किया गया, but अभी के लिए हमारे यहाँ तो सब OG चलता है. 9990904 is number, call, message, text, WhatsApp में मोस्ट रास्ता संतरे गेट बड़ी किस नार में बस यूं दे योर न्यू वापस आए.

0: करो हंगामा आजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
0: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM.
2: हाय मैं हूँ अश्रा और आप सुन रहे हैं सेगमेंट गेम ऑन। शो है हंगामा और गेम ऑन जहाँ मिलता है आपको लोकल नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अपडेट। और आज की अपडेट कुछ खास है बिकॉज सिर्फ हमारा गेम ऑन नहीं बल्कि जो जिसके बारे में ऑलरेडी भी हमने पिछले जब से शुरू हुआ है BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैम्पियनशिप उसके बारे में हम आपको लाइव अपडेट देते रहते हैं। बट अभी की बात करें जो डबल्स का रिकॉर्ड बनाया था फर्स्ट इंडियन फीमेल डबल्स बैडमिंटन में जिन्हें अवार्ड मिला था पिछले 11 साल से आज जाकर उन्हें अवार्ड मिला था ठीक है। बट अभी की बात करें उन्होंने फाइनल्स खेल लिया है। एथलीट्स का नाम ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद है। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एंड दे हैव बिन द हाई टाइटल्ड मूवमेंट एंड हिस्टोरिक मूवमेंट फॉर इंडिया। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि और आपको अपडेटेड रखने के लिए बताया था कि पीवी सिंधु वाज आउट फ्रॉम द BWF फेडरेशन। बट इनकी बात करें तो दे प्लेड रियली वेल और अभी उन्होंने खलबली तो मचाई है और साथ में ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया है। मैं हूं अश्रा सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM और कुछ ही ट्रैक्स के बाद आपसे अलविदा बोलेंगे। बट तब तक के लिए बीड़ू जल्दी से जुड़ जा और आजू बाजू मत देख, शर्माना छोड़ डाल, जो भी है जल्दी से बोलो

0: ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।
2: हाय, मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।
3: हंगामा तो है बट बस आज का हंगामा यहीं तक था, क्योंकि 4 बजने वाले हैं और आपका और मेरा साथ यहीं तक था। आज मंडे था, फन डे, संडे के बाद जो ये मंडे आता है ना, क्या बताऊं, खुशी तो नहीं होती बट इस बात की खुशी जरूर होती है कि वापस आके आपसे बात करेंगे, आप लोग हमसे जुड़ेंगे, बहुत ही मजा आता है और मजा आया भी। और आज का वादा यही है कि कल वापस आऊंगी, क्योंकि 2 से 4 रेडियो सुनार पे हंगामा होता है, मैं नहीं आऊंगी तो हंगामा कौन करेगा। और अभी के लिए बस इतना ही, जाते जाते बस ये कहना चाहती हूँ कि अपना ख्याल रखिए एंड मेक श्योर आज का वो क्रेजी मेमोरी वाला एडवाइस नहीं, आज कुछ नया एडवाइस है मेरे पास। आज मेरे पास ये एडवाइस है कि अगर आपको कभी लगता है कि आप बाकी लोगों में से, जो आपके आसपास लोग हैं, या कभी कभी आप बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, फिर आप ये सोचते हैं कि भाई अभी मेरी ज़िंदगी में मैं सबसे पीछे जा रहा हूँ, मैं एक रेस में हूँ जिस पे शायद मैं अच्छा कर नहीं रहा। बट बेसिकली हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें किसी और से वैलिडेशन के लिए, किसी और की तारीफ़ के लिए अपनी लाइफ को ऑल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। और जो इंसान कहीं ना कहीं आपको देख कर चीज़ें कर रहा है, इंस्पायर होकर कर रहा है या कॉपी करके कर, हमें तो नहीं मालूम, बट उसे करने दीजिए। देर आर अ लॉट ऑफ फैंस ऑफ योर, जरूरी नहीं है कि आपको सेलिब्रिटी होना पड़ेगा ताकि आपके फैन हो। कभी कभी आप अपनी जिंदगी में ऐसी पोजिशन, ऐसा पावर, ऐसी अथॉरिटी होल्ड करते हैं कि लोग चाहते हैं कि वो आपके जैसा बने, उसमें कुछ गलत नहीं है। बस ये है कि आप खुद को प्रूव करने के लिए अपनी लाइफ का कोर्स चेंज ना करें।

इसलिए अपने फैंस को कहिए आई लव यू और उनको जीने दीजिए और गिव देम मोर टू कॉपी, गिव देम मोर टू गेट इंस्पायर्ड. मैं वस्त्रा सुंदर ये रेडियो सुनार, आज के लिए बस इतना ही. जाते जाते बस यही कि अपना ख्याल रखिए, क्रेजी मेमोरीज बनाइए और अपने लिए कुछ ना कुछ करिएगा. हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल अपने लिए कोई ना कोई चीज़ करते रहिए. मैं वस्त्रा सुंदर ये रेडियो सुनार, आज के लिए बस इतना ही. साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड आउट.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, only on रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।
2: सूरज की बेवफाई से डरने लगी है शाम, सूरज की बेवफाई से डरने लगी है शाम, धरती पे धीरे धीरे उभरने लगी है शाम, मौसम बदल रहा है हवा सर्द सर्द है,
3: वाह
2: मौसम बदल रहा है हवा सर्द सर्द है, ऐसी फिजा में और भी निखरने लगी है शाम।
1: रेडियो चनार 90.4 FM में आपका वेलकम है और आज दिल की बात साहिल के साथ सेट्स पे हमारे एक खास मेहमान जुड़े हैं, सन ऑफ द सॉइल बारामूला से हैं और एक सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे नॉर्थ कश्मीर के, बहुत सालों से जर्नलिज्म के फील्ड में एक्टिव हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ एन अमेजिंग गाय और काम कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और उसके साथ साथ ये लिखने का शौक भी रखते हैं। आज इनकी जिंदगी के कुछ पहलू जिसमें खास

0: कर जो सोशल एक्टिविज्म है उस पर बात करेंगे। जी हाँ, वेलकम करते हैं हम तहे दिल से आज के मेहमान अंजर मौजू का। अंजर साहब अस्सलाम वालेकुम, और रेडियो चिनार में आपका वेलकम है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पर मधु किया, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जब भी सोशल एक्टिविज्म की बात आती है, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट है, उस मुद्दे पे हम कभी और बात करेंगे, लेकिन सोशल एक्टिविज्म की हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज है और आप काम कर रहे हैं जो हमारे सोसाइटी में जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, जिनके लिए इनफैक्ट काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पहलू पे आप रोशनी डालिए कि आप किस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, किस वर्टिकल के साथ जुड़े हैं सोशल एक्टिविज्म में।
1: देखिए कि मैं इस मिशन के साथ तकरीबन 4-5 साल से जुड़ा हूं।
0: जी,
1: हमारे जो यहां पर एक खास किस्म के जो इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, जिनको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, तो चूंकि मैं भी एक ब्लेस्ड फादर हूँ एक डाउन सिंड्रोम बच्चे का, तो जब हमने वो हमारे घर में वो पैदा हुआ तो हमें ये डिटेक्ट हो गया कि ये डाउन सिंड्रोम है। तो फिर मुझे उसकी तरफ, जब मैं उसकी तहकीक में गया, ये डाउन सिंड्रोम बच्चा क्या होता है, ये क्या है, उसके लिए बहुत हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हमारे घर में वो वसाइल मौजूद थे कि हम उसको किस तरह से डेवलप करेंगे, हम उस पर क्या फोकस करेंगे। फिर मेरे दिमाग में ये आ गया कि हमारे दाएं बाएं सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल उन जिनको छोड़ा गया है,
0: जिनके पास वसाइल भी नहीं,
1: और जिनके पास वसाइल भी नहीं है, और जिनके पास अवेयरनेस नहीं थी कि हम क्या करें
0: क्या करें।
1: तो उस लिहाज से मैंने एक उन उन, उन बच्चों के ढूंढा, घर घर गाँव गाँव वो बच्चे ढूंढे मैंने। तो वहाँ पर एक उनका एक उनके पेरेंट्स से मिला मैं।
0: जी जी।
1: तो एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया जो व्हाट्सएप के माध्यम से था। तो उस लिहाज से मैंने उनको ये एक्सपर्ट्स लाए, जूम मीटिंग्स की उनके साथ, उनको पता चला कि नहीं, हमारे बच्चे भी इंशाल्लाह रहमान ये भी वक्त के साथ साथ बिल्कुल नॉर्मल बच्चों के साथ शाना बशाना ये अपना काम करेंगे।
0: यकीनन जब इंसान को दिल में एक चाह होती है कि अपनी सोसाइटी के लिए, अपने जो आसपास के लोग हैं उनके लिए कुछ करे, तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जो अभी स्कूल एक चल रहा है उस पर मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे छोटे छोटे गाँव में है या टाउन्स में है जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको शायद अवेयरनेस नहीं है। बारामूला में एक स्पेशल एबल्ड बच्चों के लिए स्कूल है, और आपने जैसे कहा कि आप वहाँ पे एज पेरेंट भी हैं, और आपकी उस स्कूल के साथ वाबस्तगी ये है कि आप चाहते हैं कि वो और अपलिफ्ट हो जाए।
1: जी,
0: उसके बारे में बताइए, स्कूल कहाँ पे है और क्या क्या फैसिलिटीज वहाँ पे है।
1: मैं आपके माध्यम से ये लोगों तक, जो जितने भी ये प्रोग्राम हमारा देखते होंगे,
0: जी,
1: जो उनके पेरेंट है, जो जिनका बच्चा कोई भी डिसेबल है, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबल है,
0: जी जी,
1: चाहे वो डाउन सिंड्रोम है, ऑटिज्म हो, या कोई भी डिसेबिलिटी हो, उस पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, वो मैं बड़ी मेहरबानी करके, हमारा जो स्कूल है बारामूला में बिल्कुल सेंट जोसेफ हॉस्पिटल के अपोजिट, जिसे हम डैगर परिवार स्कूल कहते हैं, जहाँ पर कोशिश की गई है एक एनजीओ ने, जो जिसको उसको एडॉप्ट किया है, इंद्रानी बालन एनजीओ एक है, उन्होंने एक कोशिश की है कि एक जो एक स्पेशल स्कूल जो जैसे कि हम चंडीगढ़ में है, चेन्नई में है, या किसी और जगह है, जो जिनकी जिनकी जिनकी रीच एक आम इंसान तक नहीं है, लेकिन एक फ्री ऑफ कॉस्ट पे ऐसी फैसिलिटीज रहने की कोशिश की गई है, जहाँ पर हमारा एक ट्रेन स्टॉप है, और वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट भी है, और वक्त वक्त पे वहाँ पर हमारे जीएमसी से चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी आते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट भी आते हैं, और उनको डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ रखा जाता है उनको, जितने भी पेरेंट्स हो, उसमें कोई उनको कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, वो अपने बच्चों को लाए, एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए उनके पास, जो सीएमओ कंसर्न देता है कि बच्चा इसकी डिसेबिलिटी, जो इसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबल कितने कितनी परसेंट है इसकी, तो वो वहाँ पर एडमिट होगा, कोई फीस नहीं है, उसकी किताबें, उसकी हर एक जो एक्टिविटीज़ है वो फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी वहाँ पर।
0: बहुत ही अच्छी बात है, और जो पेरेंट्स अभी हमें रेडियो चिनार के प्लेटफॉर्म के लिए देख रहे हैं, यू नो, अक्रॉस नॉर्थ कश्मीर की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, तो उनके लिए भी एक मौका है। तो अंजर साहब, मैं चाहता हूँ कि जो अभी ऑडियंस आपको देख रही है,
1: जी जी,
0: और अगर आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता कि आपसे वो इन टच हो रहें, ताकि अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो, यू विल बी देयर टू हेल्प।
1: मैं जितने भी इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों के पेरेंट्स हैं, अगर उनको कोई भी इशू आता है, उनके बच्चों को ज़्यादा से सबसे ज़्यादा उनको हेल्थ इश्यूज होते हैं,
0: जी जी,
1: अगर उनको हेल्थ इश्यूज है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो उसको, चूँकि बहुत पैसे लगते हैं, वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें, किसी भी टाइम मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें, इंशाअल्लाह रहमान मैं कोशिश करूंगा उनका जो उनके जो मसाइल है वो हल करूंगा।
0: बहुत ही अच्छी बात है और

0: मुझे लगता है कि इस सेशन से एक मैसेज जाएगी और उन लोगों तक बात पहुंचेगी जिनको शायद ये पता नहीं है कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को तालीम मिलती है, पढ़ाया जाता है जो स्पेशली एबल्ड है। तो रेडियो चिनार के प्लेटफॉर्म से हमारी ये कोशिश रही है। अंदर साहब आप बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं और जो आपके दिल में जज्बा है कि जैसे आपने अभी कहा कि 24/7 पीपल कैन कॉन्टेक्ट मी और माई पर्सनल मोबाइल नंबर भी हेल्प, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में जो इस जज्बे से अपने लोगों के लिए काम करते हैं, और रेडियो चिनार की पूरी टीम और मैं पर्सनली आपके इस जज्बे को सलाम करते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि अंदर साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक खूबसूरत अदीब भी हैं, क्योंकि ये कभी तन्हाई में बैठ के अपने कलम की स्याही से कुछ ऐसे अल्फाज लिखते हैं जो दिल को यकीनन छू जाते हैं। अंदर साहब शाम का टाइम अभी होने वाला है तो आपकी एक गजल है जिसमें शाम का जिक्र है, क्यों ना हमारे लिए हो जाए और जो लोग आपको अभी सोशल मीडिया पे अक्रॉस द कश्मीर या अक्रॉस द वर्ल्ड देख रहे हैं।
1: बड़ा साहिल साहब मैं ये आपको ये बताऊं कि एक आप एक प्रोफेशनल आरजी है, क्योंकि आप जो आपके आपके पास एक गेस्ट आने वाला होता है आपने उसकी तहकीक की होती है ज़बरदस्त, उसकी बाल की खाल जो है ना वो निकालते रहते हैं। तो जो आपने मुझे फरमाइश की, मैंने जैसे कि अभी बताऊँ आपको कि मैं वो अदीब वगैरह जो आपने बताया वो नहीं हूँ, लेकिन उदबा के जो उनकी सोहबत में रहता हूँ तो वो कहते हैं ना वो
0: संगत
1: का असर है। तो एक गजल के चंद अशआर है
0: जी जी।
1: सूरज की बेवफाई से डरने लगी है शाम, सूरज की बेवफाई से डरने लगी है शाम, धरती पे धीरे धीरे उभरने लगी है शाम, मौसम बदल रहा है हवा सर्द सर्द है, मौसम बदल रहा है हवा सर्द सर्द है, ऐसी फिजा में और भी निखरने लगी है शाम, शाखों पे आ रहे हैं परिंदे थके हुए,
0: क्या बात,
1: शाखों पे आ रहे हैं परिंदे थके हुए, मगरिब की वादियों से उभरने लगी है शाम, अंजर किसी का साथ ये किस्मत से हो गया, अंजर किसी का साथ ये किस्मत से हो गया, राहत और खुशी में गुजरने लगी है शाम।
0: क्या बात है, क्या बात है, दिल खुश कर दिया। शाम का समा है, मुझे लगता है कि ये जो इंटरव्यू इसी शाम के लिए बना था, और जब आपने ये शाम पे जो ये गजल लिखी है इट्स आइसिंग ऑन द केक, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूं कि आज हमने सोशल एक्टिविज्म के हवाले से बात की, इंशाल्लाह फिर कभी अंदर साहब को बुलाएंगे और आपके जो एज अदीब जो आपने कुछ काम किया है या लिखा है उसको लोगों तक लाएंगे। आज आप यहाँ पे आए, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। जाते जाते आपसे जानना चाहूंगा, यू आर फ्रॉम यू नो नॉर्थ कश्मीर और रेडियो चिनार नॉर्थ कश्मीर का पहला रेडियो स्टेशन है, और हमारी ये हर बार कोशिश रहती है कि यहाँ पे जितने भी आसपास हमारे लोग हैं जो बहुत खूबसूरत काम करते हैं उनको बुलाएं, और आज हम खुश किस्मत अपने आप को समझते हैं कि आप यहाँ पे आए और हमारे स्टूडियो को अपने आने से यहाँ पे जीनत बख्शी। उसके लिए मैं आपको अपनी मैनेजमेंट की तरफ से और पर्सनली अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने यहाँ पे,
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर दावत दी, और जो आपके जो टीम है यहाँ पर बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत ही उम्दा लोग हैं आप, आपको मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया और सलाम।
0: वालेकुम सलाम। तो दोस्तों ये अंजर साहब की ये ख़ास मुलाकात आपने देखी, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो रेडियो चिनार की कोशिश है कि आप तक हम उन हीरो को, वो कहते हैं ना कि तराश के लाएं और आप उनको देखें और उनको जानें उनको काम को, ताकि हमारी सोसाइटी में एक पॉजिटिव मैसेज जाए और जितने भी सोशल एक्टिविज्म के साथ लोग जुड़े हैं वो और एनकरेज हो जाएं और अपनी सोसाइटी के लिए काम करें। फिलहाल आज के इस शो में इतना ही, इंशाल्लाह बहुत जल्द रेडियो चिनार के सेट्स पे आपसे होगी मुलाकात। जी हाँ, हज़ बी मामूल, टिल द टाइम वी मीट अगेन, लेट्स सेपरेट सम लव, सेपरेट सम स्माइल्स। दिस इज आरजे साहिल मुजफ्फर साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्दे
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर

रखे। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखे। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

दिल की बात साहिल के साथ ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: दिल को
3: करार आ जाए
2: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
2: दबी यादें महक जाए
3: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
3: सुनिए सुहानी शाम
2: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4
2: FM।
0: रेडियो चुनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

बुजुर्गों ने

अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

0: रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक, हिर लो पान चबाए। अरे

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

0: प्यार से है।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
2: 90.4
1: FM। दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
2: 90.4
1: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

الم، درد، ٹھیس اور زخم دے جاتے ہیں تو آپ کچھ نہیں کہتے ہیں۔

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।

0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: एफएम। रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम आनंद बख्शी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4 FM।

0: अनिशा।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको दौड़ कुछ नहीं कहते, मगर

जिगर, चैन, आराम, रातें, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: एफएम। दिल को
0: करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे, अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे कहिए ना।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे खतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार ओ गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: के चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना तारा रा रा रा। जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

0: हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा।

मैंने खींचा आहा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आहा। हमसे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की फॉरेस्ट एजेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।